0: कहते हैं ना कि हर सुबह हमें एक नया मौका देती है, और कल जो नहीं कर पाए उसे आज करने का एक मौका आपके पास है, ऐसा आप समझिएगा। हेलो, माय सेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम।
1: ऑल इज वेल विद आरजे अदनान।
0: और गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर। याद रखिएगा कल जो गलती हुई उसे सीखने का मौका है, और कल जिन बातों ने हमें परेशान किया उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का भी एक मौका ही है अपने हाथ में। लेकिन क्या है ना, हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही कल की टेंशन, आने वाले कल की चिंता और दूसरों से अपनी क्या बोलते उसको तुलना करना। अरे भाई, जिंदगी कोई रेस थोड़ी है जिसमें हर किसी से आगे निकलना थोड़ी होता है। कभी कभी बस इतना ही काफी है कि आप कल से थोड़ा बेहतर इंसान बने। आज किसी से प्यार से बात करके देखिए, किसी की मदद करके देखिए, और सबसे जरूरी बात, खुद को थोड़ा वक्त दीजिएगा। और आज का विचार मॉर्निंग का यही है कि हर दिन जितना जरूरी है उसी तरीके से हर दिन नया सीखना भी बहुत जरूरी है, समझे। तो मुस्कुराइए, अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ कीजिए, और याद रखिए आपका आज आपके आने वाले कल की कहानी लिख रहा होता है। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त आरजी अदनान, और आप सुन रहे हो एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: All is well with RJ Adnan.
2: Only on MGM 90.8 FM.

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अदनान आपके साथ है। आज ची तुमची ही मॉर्निंग गुड करायला इन द शो। ऑल इज वेल विद आरजे अदनान। वक्त हो चुका है 7:27 का। इसी के साथ आज है 15 अक्टूबर। चलिए फिर जानते हैं आज के दिन का दिन विशेष क्या है। आरजे अदनान सोबत दिन विशेष, दिन विशेष। 15 अक्टूबर से ना तो ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपनाने की शुरुआत कैथोलिक देशों में हुई थी। और यहाँ पर एक अलग बात ये थी कि 4 अक्टूबर के बाद डायरेक्ट 15 अक्टूबर सीधे आ गया था। 4 के बाद का जो 5 से लेकर 14 तक के जो दिन थे ना, वो पूरे गायब हो चुके थे। ऐसा क्यों हुआ था पता है आपको? यूरोप में ना तो पहले जूलियन कैलेंडर चलता था, जिसे जूलियस सीजर ने 45 ईसवी सन पूर्व में शुरू किया था। इस कैलेंडर में हर साल 365 दिन थे, यानी कि 4 साल में से एक लीप ईयर होता था। असली खगोलीयन वर्ष जिसमें पृथ्वी सूरज का एक चक्कर पूरा करती है, वो 365.2422 दिन का होता था। एक छोटे से फर्क यानी कि 0.0078 दिन हर साल, इतना फर्क था। इस दिन ने ना तो सैकड़ों सालों में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी थी, यानी तारीखें मौसमों से पीछे छूटने लगी। फिर इसके अंदर करेक्शन किया गया 1582 में पोप ग्रेगरी 13वीं ने। इन्होंने ये गलती सुधारने का फैसला किया और उन्होंने नया कैलेंडर बनाया, जॉर्जियन कैलेंडर, जिसमें लीप वर्ष की गणना थोड़ी बदली गई ताकि साल का औसत 365 दिन के करीब रहे। पुराने कैलेंडर की गड़बड़ी मिटाने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि थर्सडे 4 अक्टूबर 1582 के बाद अगला दिन सीधे फ्राइडे 15 अक्टूबर 1582 माना जाएगा, यानी 10 दिन कैलेंडर से हटा दिए गए ताकि मौसम और तारीख फिर से मेल खाए। और इसके बाद आज प्रमुख घटनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और आज जन्मदिन है एपीजे अब्दुल कलाम जी का, भारत के 11वें राष्ट्रपति, वो मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। उन्हें शिक्षा और युवाओं से गहरा लगाव था। हर साल ना तो आज का दिन भारत में विश्व छात्र दिवस रूप से मनाया जाता है, जिसे अब्दुल कलाम जी की जयंती से जोड़ दिया गया था। सादगी, मेहनत और विश्वास से उन्होंने ये साबित किया था कि अगर इरादे बुलंद हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। शिक्षा के प्रति उनका लगाव इतना गहरा था कि उनकी जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब्दुल कलाम जी ने 1969 में इसरो की शुरुआत की थी। भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यानी SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जिसने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। DRDO में मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, इस वजह से उन्हें कहा गया है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान था, जिसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल कर दिया। भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे, जिन्हें लोग प्यार से कहते थे पीपल्स प्रेसिडेंट। उन्होंने राष्ट्र को विकसित भारत 2020 का सपना दिखाया। सादगी और जनता से जुड़ाव उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से भी उन्हें नवाजा गया था। ये था आज के दिन का दिन विशेष 15 अक्टूबर का। ऐसे इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के साथ सुनते रहिए आरजे अदनान का शो।

money.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

ख्वाहिशें पूरी करना तो मेरा काम है, मेरा कर्तृत्व है। आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM। All is well with RJ Adnan। और इस वक्त हमारे पास गाने की फरमाइश आई है देवांश शेजू इनकी तरफ से इस गाने के लिए।

तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। इस गाने के सिंगर है द लेजेंडरी मोहम्मद रफी साहब। शंकर जय किशन जी का म्यूजिक है और हसरत जयपुरी का गीत है इस गाने, मतलब इस गाने के लिरिक्स इन्होंने लिखे हसरत जयपुरी जी ने। और फिल्म थी पागल कहीं का, जिसमें ना तो मेन कैरेक्टर में थे शम्मी कपूर। ये गाना यादों और एहसासों की गहराई को बयां करता है और आज भी ना तो प्रेम करने वालों के दिल में एक अलग जगह इस गाने ने बनाई है। तो चलिए फिर फरमाइश पर देवांश जी की ये गाना हम एंजॉय करते हैं। बाय द वे, आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, बताइएगा जरूर एंड सुनते रहिए।

0: हो तुम मुझे।
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: बिलिप।
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरओपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: अक्टूबर मंथ में पानी के टैंकर बुलवाने पड़ जाए तो हालात कितने खराब हो रहे पता है आपको?
1: All is well with RJ Adnan.
0: क्योंकि अपने शहर में पानी की प्रॉब्लम है ये हम सभी को पता है और इस साल बारिश कम नहीं बहुत ही कम हो गई है और इसका असर सीधे अब नजर आ रहा है। हालात ऐसी है कि पहली बार अक्टूबर महीने में टैंकर से पानी मंगवाने की नौबत आ गई अपने शहर में और अगर आने वाले दिनों में भी हालात नहीं सुधरे तो दिसंबर के बाद बिना तो परेशानी ऐसी बढ़ती रहेगी। अब सवाल ये है कि हम करेंगे क्या? तो दोस्तों करना आपको बस सिंपल सी बात है, पानी की किल्लत होने के बाद पानी बचाने की अपील करने से बेहतर है हम आज से ही पानी बचाना शुरू कर देना चाहिए। नल खुला छोड़कर दांत साफ करना ऐसा ये गलती मत कीजिए। गाड़ी धोने के लिए जरूरत से ज्यादा पानी मत बहाइए और पाइप लगाकर घंटों पानी बहाते रहना ये भी बहुत गलत बात है। तो इन छोटी लापरवाही की वजह से पानी की परेशानी बढ़ सकती है तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए महानगर पालिका ने भी पानी की बर्बादी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी जारी किया है। अगर आपने पानी की बर्बादी की तो आप पर कार्रवाई तो होगी लेकिन साथ ही साथ फाइन भी वसूल किया जाएगा। तो फाइन वसूल ना हो और आपके पैसे सेफ रहे तो पानी बर्बाद मत कीजिए। पानी की एक एक बूंद की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ऐसा हमें कहना पड़ेगा कि पानी की एक बूंद कीमत बहुत है भाई। जब आपके घर में एक बूंद पानी नहीं बचेगा तब जाकर समझ में आ जाएगा। तो पानी बचाइए, जिम्मेदार नागरिक बनिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिएगा। सेव वाटर एंड स्टे ट्यून्ड।
1: ऑल इज वेल विद आरजे अदनान
2: only on MGM 90.8 FM.

0: छोटा सा सवाल आपसे, बड़ा ही छोटा सा है, नादान सा है, कि आपके हाथों ने आज सुबह से लेकर अब तक क्या क्या किया है?
1: All is well with RJ Adnan.
0: मोबाइल चलाया, दरवाजा खोला, गाड़ी की चाबी पकड़ी, पैसे गिने और फिर सीधे खाने पर अटैक कर दिया। लेकिन भाई साहब, बहन जी, दादाजी, दादी जी, भैया जी, भाभी जी, एक मिनट रुकिएगा, हाथों की इस पूरी कुंडली में साबुन का नाम भी है या नहीं? क्योंकि हाथ दिखने में साफ है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके कीटाणु छुट्टी पर चले गए। और इसी छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी आदत के लिए हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, यानी कि हाथ धोने के लिए भी कोई दिन सेलिब्रेट किया जाता है, समझे क्या? इस दिन को मनाने का मकसद है लोगों को समझाना कि साबुन और साफ पानी से हाथ धोना कई बीमारियों से बचाव का एक सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है, समझिए। अब जरा सोचिए, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले और खांसने या छींकने के बाद हाथ साफ करना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है, और ये चीजें यार बचपन से हमें स्कूल में सिखाई जाती है। और हाँ, हाथ धोने के नाम पर नल के नीचे 2 सेकंड हाथ घुमाकर ये मत बोलना कि हो गया, मिशन कंप्लीट। वो आपको एक साबुन की आइडिया दे, ए चिंटू तेरा साबुन स्लो है क्या, तो कहना कि साबुन तो स्लो नहीं है लेकिन मैं हाथ प्रॉपर तरीके से और आराम से 1 मिनट तक तो धोता ही हूँ। वैसे कहा जाता है कि कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथों को अच्छी तरह रगड़िए, हथेलियां, हाथों के पीछे का हिस्सा, उंगलियों के पीछे और नाखून के आसपास भी सब कुछ साफ सफाई रखिएगा। याद रखिए, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े और शानदार परफ्यूम आपको स्टाइलिश बना सकते हैं लेकिन साफ हाथ आपको एकदम स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। तो याद रखिएगा भाई, हाथ धोना है जरूरी, इससे मत करना कोई मजबूरी। तो 15 अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, तो हाथ धोते रहिए, कीटाणुओं को टाटा बाय बाय कीजिए। और कहते ना कि 99.9% कीटाणु मिट जाते हैं, हाँ वो जो 1% वाला कीटाणु होता है ना, वो हम सब के अंदर होता ही है। खैर, स्टे ट्यून्ड,
1: ऑल इज वेल विद आरजे अदनान,
2: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, NH5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

आजकल लोगों को सुंदर दिखने का बड़ा शौक है, लगना भी चाहिए यार। All is well with RJ Adnan. कोई फेस वॉश से चेहरा चमका रहा है, कोई हजारों रुपए का क्रीम लगा रहा है, तो कोई पार्लर में जाकर ग्लोइंग स्किन कर रहा है। थोड़े भी पैसे आपने हाथ के लिए साइड में कर ले तो बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सिर्फ शक्ल चमकाने से कुछ नहीं होगा, हाथ भी साफ रखने पड़ेंगे, क्योंकि चेहरा तो आपका चमक ही रहा है। आए हाय कितने खूबसूरत नजर आ रहे हो आप, माशाल्लाह किसी की नजर ना लगे आपको। लेकिन उन्हीं हाथों से आप मोबाइल भी चलाते हैं जो आपके पास हाथ है, दरवाजा खोलते हैं, पैसे पकड़ते हो और फिर बिना हाथ धोए सीधे टूट पड़ते हो खाना खाने के लिए। अब उस बेचारे समोसे की क्या ही गलती है, गलती तो आपके हाथ की है ना। और सबसे मजेदार बात यह है कि हाथ देखने में साफ हो सकते हैं, लेकिन उन पर ऐसे कीटाणु भी हो सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, और आप बीमार गिरने के बाद फुजूल में समोसे को नाम रखते हैं। बेचारे को आपके हाथ ही गंदे हैं तो वो क्या करेगा। इसलिए ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे आज ये सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाथ धोना कितना जरूरी है। वैसे हाथ धोकर किसी के पीछे पड़ना अच्छी बात नहीं है, बट हाथ धोना बहुत अच्छी बात है। खाना खाने से पहले, टॉयलेट आने के बाद, जाने के बाद, कुछ भी करने से पहले हाथ धोते रहिए, क्योंकि चेहरे का ग्लो ना लोगों को इम्प्रेस करता है, लेकिन हाथों की सफाई आपको तंदुरुस्त रहने में मदद करती है। समझे, चेहरा चमकाओ, हाथ साफ रखो और हेल्दी लाइफ का वेलकम करो। बाकी तो आरजे अदनान के साथ हाथ धोकर पीछे पड़िए और ये मेरा शो एंजॉय कीजिएगा आने वाले सुपर डुपर हिट गानों के साथ। स्टे ट्यून। ऑल इज वेल विद आरजे अदनान, ओनली ऑन MGM 90.8 FM.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरओपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: अच्छा एक बात बताओ, याद है आपको वो हॉस्टल का कमरा, ऑल इज वेल का वो मैजिक मंत्र, और याद है वो तीन पागल बेफिक्रे दिलदार दोस्त जिन्होंने हमें सिखाया था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सफलता आपके पीछे आ जाएगी। वो जो लफ्ज है वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, आप समझिएगा। तो मैं बात जो आपको बताऊंगा उसे सुनकर आपके चेहरे की स्माइल 32 की जगह 36 इंच की होने ही वाली है। तो दिल थाम के बैठिएगा बॉस, क्योंकि हमारे प्यारे रैंचो फरहान और राजू यानी आमिर खान, आर माधोना और शर्मन जोशी फिर से एक साथ एक ही फ्रेम में हमें नजर आने वाले हैं धमाल मचाते हुए। जी हाँ, सच्ची कह रहा हूँ, थ्री इडियट का सीक्वल अब आने वाला है और अप्रैल मंथ से ना तो इसका शूटिंग स्टार्ट हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। राजकुमार हिरानी और अभिजीत जोशी ने तो इसकी स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली है और ये तिगड़ी में फिर से तकरीबन 20 साल के बाद बड़े पर्दे पर एक साथ दिखेगी। और कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इसका सीक्वल बन सकेगा, लेकिन कहानी अब आगे बढ़ने वाली है तो हमें तो बाद में पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस बार थ्री इडियट में क्या कुछ बवाल मचने वाला है। लाल यादव के सफर को थोड़ा और ताजा करते और सुनते हैं जरा थ्री इडियट का वो आइकॉनिक गाना ऑल इज वेल एंड हमेशा मुस्कुराते रहना, मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: बेसिक पब्लिक मैनर्स के नाम पर ना तो कुछ लोग बहुत डिब्बा है, एकदम डिब्बा।
1: All is well with RJ Adnan.
0: तो चलो यार एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो कि बहुत सारे लोग इसको फेस करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि इस बात को कैसे समझाया जाए। देखो मेरा मतलब क्या है यार, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा ना कि आप किसी शांत कैफे में कॉफी एंजॉय कर रहे हो या फिर बस में सुकून से बैठे हो या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर हो और अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हो, तभी कान के पर्दे फाड़ने वाली आवाज आती है। हाँ राहुल बोल। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, क्या हाल चाल? अच्छा ऐसा हुआ? ओ शर्मा जी के यहाँ ऐसा हुआ क्या? राहुल को तो छोड़ो, पूरे बस को या कैफे को या उस पब्लिक प्लेस को पता चल गया कि शर्मा जी के वहाँ कुछ तो मैटर हो गया है। पता नहीं यार क्यों, पर कुछ लोगों को लगता है कि जब तक वो पब्लिक प्लेस में 100 डेसिबल पर चिल्लाए नहीं, उनका नेटवर्क कनेक्ट होता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका टेलीकॉम ऑपरेटर बोल रहा है सुनो बॉस, जब तक पूरी पब्लिक को अपनी बातें नहीं सुनाओगे तब तक आपका कॉल कंप्लीट नहीं होगा या तो फिर कॉल ड्रॉप हो ही जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको आरजे एक बहुत बड़ा ज्ञान देने जा रहा है। ज्ञान नहीं, एक फतेह की बात बताऊंगा। आपके फोन के नीचे जो वो छोटा सा छेद होता है ना, उसे माइक्रोफोन कहते हैं। चेक कीजिएगा है क्या, है ना? तो उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अगर आप धीमे से भी या शराफत से भी बोलोगे तो आपकी आवाज सामने वाले तक आराम से पहुंच जाएगी। अगली बार फोन आए तो वॉल्यूम थोड़ा लो रखिएगा खुद का। सामने वाले के पास फोन है वो बहरा नहीं है, वरना लोगों को आदत होती है पब्लिक प्लेस पर चिल्ला चिल्ला कर बात करने की फोन पे। तो सुधर जाइए इससे पहले कि लोग आपको देखकर कान में रुई ठूसने लगे या तो फिर आपको चिल्लाने लगे। देखो सादी सिंपल सी बात है लेकिन ये भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। उसका गला फाड़कर और हमारा गला फाड़कर बस बातें करते रहते हैं जोर जोर से फोन पर। सुधर जाइए समझे, और जरा बताइएगा कि आपने ऐसे गला फाड़ने वाले लोग कहीं देखे हैं क्या? DM on Insta RJ Adnan and stay tuned.
1: All is well with RJ Adnan.
2: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 7 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM। दोस्तों एक जमाना था जब हिंदुस्तान सिर्फ अपने गानों के लिए नहीं अपने जूतों के लिए भी बहुत मशहूर था। मैं बात कर रहा हूँ 1955 के एक आइकॉनिक गाने की।
1: मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
0: ये गाना ना सिर्फ एक फिल्म का हिट गाना नहीं था बल्कि एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया था। राज कपूर साहब के इस गाने ने रशिया में ऐसा धमाका किया कि लोग उन्हें श्री 420 इस नाम से बुलाते थे। और एक बार तो मॉस्को के एक मेले में ऐसा हुआ, रशियन आंटी यही गाना गुनगुना रही थी वो भी हिंदी में, और राज कपूर साहब वहाँ पहुंचे तो और लोगों ने तो लिटरली उनके जैसे ड्रेसिंग करना शुरू कर दिया था। इमेजिन करो एक फॉरेन कंट्री में लोग लाल टोपी और जापानी जूता पहनकर घूम रहे हैं सिर्फ राज कपूर साहब के लिए। और असली बात तो क्या थी पता है क्या, जो जूता ना राज कपूर साहब ने फिल्म के अंदर पहना था वो एक्चुअली इंडियन लोकल मार्केट

0: गानों के किस्सों में मेरा जूता है जापानी गाने के बारे में हमने एक किस्सा जाना।
1: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर और दिशा।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET स्क्रीनिंग, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, NH5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET स्क्रीनिंग, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी

0: एंग्जायटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एक छोटा सा सवाल आपसे, बड़ा ही छोटा सा है, नादान सा है, कि आपके हाथों ने आज सुबह से लेकर अब तक क्या क्या किया है?
1: All is well with RJ Adnan.
0: मोबाइल चलाया, दरवाजा खोला, गाड़ी की चाबी पकड़ी, पैसे गिने और फिर सीधे खाने पर अटैक कर दिया। लेकिन भाई साहब, बहन जी, दादाजी, दादी जी, भैया जी, भाभी जी, एक मिनट रुकिएगा। हाथों की इस पूरी कुंडली में साबुन का नाम भी है या नहीं? क्योंकि हाथ दिखने में साफ है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके कीटाणु छुट्टी पर चले गए। और इसी छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी आदत के लिए हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, यानी कि हाथ धोने के लिए भी कोई दिन सेलिब्रेट किया जाता है, समझे क्या? इस दिन को मनाने का मकसद है लोगों को समझाना कि साबुन और साफ पानी से हाथ धोना कई बीमारियों से बचाव का एक सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है, समझिए। अब जरा सोचिए, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले और खांसने या छींकने के बाद हाथ साफ करना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है, और ये चीजें यार बचपन से हमें स्कूल में सिखाई जाती है। और हाँ, हाथ धोने के नाम पर नल के नीचे 2 सेकंड हाथ घुमाकर ये मत बोलना कि हो गया, मिशन कंप्लीट। वो आपको एक साबुन की ऐड याद है, चिंटू तेरा साबुन स्लो है क्या? तो कहना कि साबुन तो स्लो नहीं है, लेकिन मैं हाथ प्रॉपर तरीके से और आराम से 1 मिनट तक तो धोता ही हूँ। वैसे कहा जाता है कि कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथों को अच्छी तरह रगड़िए, हथेलियां, हाथों के पीछे का हिस्सा, उंगलियों के पीछे और नाखून के आसपास भी सब कुछ साफ सफाई रखिएगा। याद रखिए, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े और शानदार परफ्यूम आपको स्टाइलिश बना सकते हैं, लेकिन साफ हाथ आपको एकदम स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। तो याद रखिएगा भाई, हाथ धोना है जरूरी, इससे मत करना कोई मजबूरी। तो 15 अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, तो हाथ धोते रहिए, कीटाणुओं को टाटा बाय बाय कीजिए। और कहते ना कि 99.9% कीटाणु मिट जाते हैं, हाँ वो जो 1% वाला कीटाणु होता है ना, वो हम सब के अंदर होता ही है। खैर, स्टे ट्यून्ड,
1: ऑल इज वेल विद आरजे अदनान,
2: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: आजकल लोगों को सुंदर दिखने का बड़ा शौक है, लगना भी चाहिए यार।
1: All is well with RJ Adnan।
0: कोई फेस वॉश से चेहरा चमका रहा है, कोई हजारों रुपए का क्रीम लगा रहा है, तो कोई पार्लर में जाकर ग्लोइंग स्किन कर रहा है। थोड़े भी पैसे आपने हाथ के लिए साइड में कर ले तो बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सिर्फ शक्ल चमकाने से कुछ नहीं होगा, हाथ भी साफ रखने पड़ेंगे, क्योंकि चेहरा तो आपका चमक ही रहा है। आए हाय, कितने खूबसूरत नजर आ रहे हो आप, माशाल्लाह, किसी की नजर ना लगे आपको। लेकिन उन्हीं हाथों से आप मोबाइल भी चलाते हैं जो आपके पास हाथ है, दरवाजा खोलते हैं, पैसे पकड़ते हो और फिर बिना हाथ धोए सीधे टूट पड़ते हो खाना खाने के लिए। अब उस बेचारे समोसे की क्या ही गलती है, होगी गलती तो आपके हाथ की है ना। और सबसे मजेदार बात यह है कि हाथ देखने में साफ हो सकते हैं, लेकिन उन पर ऐसे कीटाणु भी हो सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, और आप बीमार गिरने के बाद फजूल में समोसे को नाम रखते हैं। बेचारे को आपके हाथ ही गंदे हैं तो वो क्या करेगा। इसलिए ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे आज ये सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाथ धोना कितना जरूरी है। वैसे हाथ धोकर किसी के पीछे पड़ना अच्छी बात नहीं है, बट हाथ धोना बहुत अच्छी बात है। खाना खाने से पहले, टॉयलेट आने के बाद, जाने के बाद, कुछ भी करने से पहले हाथ धोते रहिए, क्योंकि चेहरे का ग्लो ना लोगों को इम्प्रेस करता है, लेकिन हाथों की सफाई आपको तंदुरुस्त रहने में मदद करती है। समझे, चेहरा चमकाओ, हाथ साफ रखो और हेल्दी लाइफ का वेलकम करो। बाकी तो आरजे अदनान के साथ हाथ धोकर पीछे पड़िए और ये मेरा शो एंजॉय कीजिएगा आने वाले सुपर डुपर हिट गानों के साथ। स्टे ट्यून्ड।
1: ऑल इज वेल विद आरजे अदनान,
2: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजी अदनान ऑन MGM 90.8 FM। दोस्तों एक जमाना था जब हिंदुस्तान सिर्फ अपने गानों के लिए नहीं अपने जूतों के लिए भी बहुत मशहूर था। मैं बात कर रहा हूँ 1955 के एक आइकॉनिक गाने की।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
0: ये गाना ना सिर्फ एक फिल्म का हिट गाना नहीं था बल्कि एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया था। राज कपूर साहब के इस गाने ने रशिया में ऐसा धमाका किया कि लोग उन्हें श्री 420 इस नाम से बुलाते थे। और एक बार तो मॉस्को के एक मेले में ऐसा हुआ, रशियन आंटी यही गाना गुनगुना रही थी, वो भी हिंदी में, और राज कपूर साहब वहाँ पहुंचे तो और लोगों ने तो लिटरली उनके जैसे ड्रेसिंग करना शुरू कर दिया था। इमेजिन करो एक फॉरेन कंट्री में लोग लाल टोपी और जापानी जूता पहनकर घूम रहे हैं सिर्फ राज कपूर साहब के लिए। और असली बात तो क्या थी पता है क्या? जो जूता ना राज कपूर साहब ने फिल्म के अंदर पहना था वो एक्चुअली इंडियन लोकल मार्केट से लिया गया था, बस नाम जापान का दिया था। इसे कहते हैं असली मार्केटिंग लेवल ऑफ बॉलीवुड। तो चलिए फिर आप यही गाना एंजॉय करते हैं। गानों के किस्सों में मेरा जूता है जापानी गाने के बारे में हमने एक किस्सा जाना।
2: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET स्क्रीनिंग, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: बेसिक पब्लिक मैनर्स के नाम पर ना तो कुछ लोग बहुत डिब्बा है, एकदम डिब्बा।
1: All is well with RJ Adnan.
0: तो चलो यार एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो कि बहुत सारे लोग इसको फेस करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि इस बात को कैसे समझाया जाए। देखो मेरा मतलब क्या है यार, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा ना कि आप किसी शांत कैफे में कॉफी एंजॉय कर रहे हो या फिर बस में सुकून से बैठे हो या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर हो और अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हो, तभी कान के पर्दे फाड़ने वाली आवाज आती है। हाँ राहुल बोल। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, क्या हाल चाल? अच्छा ऐसा हुआ, ओ शर्मा जी के यहाँ ऐसा हुआ क्या? राहुल को तो छोड़ो, पूरे बस को या कैफे को या उस पब्लिक प्लेस को पता चल गया कि शर्मा जी के वहाँ कुछ तो मैटर हो गया है। पता नहीं यार क्यों, पर कुछ लोगों को लगता है कि जब तक वो पब्लिक प्लेस में 100 डेसिबल पर चिल्लाए नहीं, उनका नेटवर्क कनेक्ट होता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका टेलीकॉम ऑपरेटर बोल रहा है, सुनो बॉस जब तक पूरी पब्लिक को अपनी बातें नहीं सुनाओगे तब तक आपका कॉल कंप्लीट नहीं होगा या तो फिर कॉल ड्रॉप हो ही जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको आरजे एक बहुत बड़ा ज्ञान देने जा रहा है। ज्ञान नहीं, एक फतेह की बात बताऊंगा। आपके फोन के नीचे जो वो छोटा सा छेद होता है ना, उसे माइक्रोफोन कहते हैं। चेक कीजिएगा है क्या, है ना? तो उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अगर आप धीमे से भी या शराफत से भी बोलोगे तो आपकी आवाज सामने वाले तक आराम से पहुंच जाएगी। अगली बार फोन आए तो वॉल्यूम थोड़ा लो रखिएगा खुद का। सामने वाले के पास फोन है वो बहरा नहीं है, वरना लोगों को आदत होती है पब्लिक प्लेस पर चिल्ला चिल्ला कर बात करने की फोन पे। तो सुधर जाइए इससे पहले कि लोग आपको देखकर कान में रुई ठूसने लगे या तो फिर आपको चिल्लाने लगे। देखो सादी सिंपल सी बात है लेकिन ये भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। उसका गला फाड़ कर और हमारा गला फाड़ कर बस बातें करते रहते हैं जोर जोर से फोन पर। सुधर जाइए, समझे? और जरा बताइएगा कि आपने ऐसे गला फाड़ने वाले लोग कहीं देखे हैं क्या? DM on Insta RJ Adnan and stay tuned.
1: All is well with RJ Adnan.
2: Only on MGM 90.8 FM.

0: अक्टूबर मंथ में पानी के टैंकर बुलवाने पड़ जाए तो हालात कितने खराब हो रहे पता है आपको?
1: All is well with RJ Adnan.
0: क्योंकि अपने शहर में पानी की प्रॉब्लम है ये हम सभी को पता है और इस साल बारिश कम नहीं बहुत ही कम हो गई है और इसका असर सीधे अब नजर आ रहा है। हालात ऐसी है कि पहली बार अक्टूबर महीने में टैंकर से पानी मंगवाने की नौबत आ गई है अपने शहर में और अगर आने वाले दिनों में भी हालात नहीं सुधरे तो दिसंबर के बाद बिना तो परेशानी ऐसी बढ़ती रहेगी। अब सवाल ये है कि हम करेंगे क्या? तो दोस्तों करना आपको बस सिंपल सी बात है, पानी की किल्लत होने के बाद पानी बचाने की अपील करने से बेहतर है हम आज से ही पानी बचाना शुरू कर देना चाहिए। नल खुला छोड़कर दांत साफ करना ऐसा ये गलती मत कीजिए, गाड़ी धोने के लिए जरूरत से ज्यादा पानी मत बहाइए और पाइप लगाकर घंटों पानी बहाते रहना ये भी बहुत गलत बात है। तो इन छोटी लापरवाही की वजह से पानी की परेशानी बढ़ सकती है तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए महानगर पालिका ने भी पानी की बर्बादी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी जारी किया है। अगर आपने पानी की बर्बादी की तो आप पर कार्रवाई तो होगी लेकिन साथ ही साथ फाइन भी वसूल किया जाएगा। तो फाइन वसूल ना हो और आपके पैसे सेफ रहे तो पानी बर्बाद मत कीजिए, पानी की एक एक बूंद की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ऐसा अब हमें कहना पड़ेगा कि पानी की एक बूंद कीमत बहुत है भाई। जब आपके घर में एक बूंद पानी नहीं बचेगा तब जाकर समझ में आ जाएगा। तो पानी बचाइए, जिम्मेदार नागरिक बनिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिएगा। सेव वाटर एंड स्टे ट्यून्ड।
1: ऑल इज वेल विद आरजे अदनान
2: only on MGM 90.8 FM.

0: अच्छा एक बात बताओ, याद है आपको वो हॉस्टल का कमरा, ऑल इज वेल का वो मैजिक मंत्र, और याद है वो तीन पागल बेफिक्रे दिलदार दोस्त जिन्होंने हमें सिखाया था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सफलता आपके पीछे आ जाएगी। वो जो लफ्ज है वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, आप समझिएगा। तो मैं बात जो आपको बताऊंगा उसे सुनकर आपके चेहरे की स्माइल 32 की जगह 36 इंच की होने ही वाली है। तो दिल थाम के बैठिएगा बॉस, क्योंकि हमारे प्यारे रैंचो फरहान और राजू यानी आमिर खान, आर माधोना और शर्मन जोशी फिर से एक साथ एक ही फ्रेम में हमें नजर आने वाले हैं धमाल मचाते हुए। जी हाँ, सच्ची कह रहा हूँ, 3 Idiots का सीक्वल अब आने वाला है और अप्रैल मंथ से ना तो इसका शूटिंग स्टार्ट हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। राजकुमार हिरानी और अभिजीत जोशी ने तो इसकी स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली है और ये तिगड़ी हमें फिर से तकरीबन 20 साल के बाद बड़े पर्दे पर एक साथ दिखेगी। और कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इसका सीक्वल बन सकेगा, लेकिन कहानी अब आगे बढ़ने वाली है तो हमें तो बाद में ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस बार 3 Idiots में क्या कुछ बवाल मचने वाला है। फिलहाल यादों के सफर को थोड़ा और ताजा करते हैं और सुनते हैं जरा 3 Idiots का आइकॉनिक गाना ऑल इज वेल एंड हमेशा मुस्कुराते रहना, मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ।
1: Only on MGM 90.8 FM.

तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।